0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं परंतु महासागर शांत रहता है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
2: एफएम। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं गगन आपके साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके लिए। चलिए, आज का एक विशेष कार्यक्रम है और इस विशेष कार्यक्रम में एक खास हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक खास बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। खास बात यह कि भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 4 मजबूत स्तंभों को निर्मित किया गया है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है समाचार माध्यम, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इसी संबंध में बात करने के लिए आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं, श्री कुलदीप शर्मा जी, जिनका 2011 से इस पद पर वो आसीन है और अनुभव देखा जाए तो प्रिंट मीडिया में भी वो काम कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत कुछ आज हमें सीखने को समझने को मिलेगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो मास कॉम के स्टूडेंट हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद गगन, आपका बहुत बहुत नमस्कार।
1: सर, मेरी जो मुलाकात है ये आपसे सेकेंड मुलाकात है और मैं वाकई बहुत खुश हूँ, और खुशी इस बात से हो रही है कि तब से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं आपके जीवन में, और जो आपका अनुभव है उस अनुभव को हम यहाँ साझा करना चाहेंगे। हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, पत्रकारिता के बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन पत्रकारिता से आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ये जो सफ़र की शुरुआत रही कैसे रही? अमूमन होता क्या कि लोग शौकिया बतौर आ जाते हैं या दिमाग में रहता है कि नहीं, मुझे मीडिया क्षेत्र में जाना है, पत्रकार बनना है, तो थोड़ा सा बताइए प्लीज़।
3: गगन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं जानता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि लोग इस तरीके से अपने बारे में कहें और विस्तार पूर्वक उन सब चीज़ों को प्रसारित करें। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मैं स्टूडेंट लाइफ से, विद्यार्थी जीवन से ही मेरे को पत्रकारिता का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और क्योंकि पत्रकार प्रेस परिषद एक हुआ करती थी
1: जी,
3: तो पिताजी के माध्यम से मैं कभी कभार उस परिषद में जाता था। ताजी सामाजिक कार्य करता थे, तो उन सब चीज़ों

0: सरिता चला करती थी पत्रिका,
1: जी जी जी,
0: तो उसमें भी एक आपका कोना करके एक वो था, स्तंभ था, उसमें लिखा।
1: तो ये कह सकते हैं कि एक बीजारोपण उस समय से हो गया आपके जीवन में।
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद कब लगा कि मुझे इस क्षेत्र में ही आना है, मुझे इस क्षेत्र में ही काम करना है?
0: बिल्कुल गगन, ये बात बहुत अच्छी थी कि उस समय जहाँ लोग अपने जीवन यापन के लिए, हम बहुत सारी चीज़ों को करते थे और जीवन यापन की में रोजी रोटी की तलाश ये सब होता रहता था, और उसी बीच मुझे कहीं और क्षेत्रों में भी काम करने का मौका मिला। कई क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्र में मैंने काम किया, सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, और उसके बाद मेरा ये पत्रकारिता का जो मोह था वो मुझे ले आया।
1: जी, इस मोह से मुझे एक बात याद आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ रोक कर आपसे वो पूछ लूं।
0: जी।
1: क्योंकि आज के समय में जब हम पत्रकार या पत्रकारिता को देखते हैं और फिर एक समय के बाद हम सुनते हैं उन्हीं लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या किसी श्रोता से या किसी पाठकगण से या किसी दर्शक से, कि मेरा इस क्षेत्र से मोह भंग हो गया है, क्या मैं अगर कुछ गलत बात कर रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत चीजें बदली है सर
0: जी।
1: तो क्या कभी कुछ ऐसा लगा कि उस समय से आज के समय में कुछ परिवर्तन आया है पत्रकारों की सोच में, पत्रकारिता में?
0: बिल्कुल सही बात है गगन, ये मोह भंग होना या मोह भंग जिसे आप कह रहे हैं उसकी संज्ञा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोह भंग हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो पत्रकारिता है
1: वास्तव
0: वो एक पूजा है।
1: बहुत सही कहा।
0: और पत्रकारिता एक ऐसी पूजा है जहां से आपका मोह भंग कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जो हमारे वेद शास्त्रों में पत्रकारों के बारे में जो कहा गया है,
1: नारद जी के बारे
0: में, वो नारद जी के बारे में कहा गया।
1: जी जी जी,
0: नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: और नारद जी को अगर कहे कि उनका मोह भंग हो गया,
1: हाँ।
0: तो जहाँ भगवान विष्णु स्वयं उन्हें पत्रकारिता की प्रेरणा देते रहे या स्वयं वो उनके ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखे, तो मोह भंग कैसे हो सकता है?
1: क्या बात,
0: सीधी भगवान विष्णु की कृपा होती है पत्रकार के ऊपर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये मेरा अपना मानना है और कई बार मैंने इस विश्वास के साथ मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ।
1: बहुत कर,
0: तो मोह भंग तो नहीं कह सकते।
1: अरे वाह, आपकी बातों में मुझे बहुत एक सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन जब मैं समाज में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं और धरातल पर कुछ और होता है, पर्दे पर कुछ और होता है, कागज कलम कुछ पर कुछ और होता है, जबकि हम सच्चाई को देख रहे होते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसा अनुभवी आदमी अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उस अनुभव को मैं साझा करना चाहूंगा और आपसे उन बातों को जरूर जानना चाहेंगे जो आपने सारी चीजें देखी हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। सो लिसनर्स, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप सीईओ हैं कुलदीप शर्मा जी, आप कहीं जाएगा मत। हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है या कुछ बात आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-2005 पर। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और साथ ही साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं। आज जिस विषय पर बात हो रही है, जाहिर सी बात है जब ये परिचय सामने आता है तो परिचय कि कोई व्यक्ति मोहताज नहीं रहता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं पत्रकारिता के बारे में, समाचार के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पत्रकारिता के बारे में बात छेड़ी थी, जो कि बात अधूरी रह गई है सर, उसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और बात निकलकर यही सामने आती है कि किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे कि पत्रकारिता है क्या।
1: देखो गगन, पत्रकारिता एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके, ये एक बृहद है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ नारद जी और विष्णु जी, नारद जी द्योतक है पत्रकारिता के, और विष्णु जी की साक्षात कृपा उनके ऊपर रहती है, ऐसे ही हर पत्रकार जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप हो, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जो संचार माध्यम है, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। स्तंभ की कोई परिभाषा नहीं होती, स्तंभ स्तंभ है। और उसकी मेरी औकात नहीं कि मैं इसको परिभाषित कर सकूं।
0: जी जी,
1: मैं अगर
0: जी
1: मैं हूं तो
0: नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल बहुत अच्छी है और सटीक जवाब आप हमें दे रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये जो मेरा सवाल करने का उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट अगर समझें, एक साधारण व्यक्ति समझे कि पत्रकारिता किस तरीके से होती है, या जो पुराने लोग हैं वो देखते थे कि पत्रकारिता पहले समय में ऐसी होती थी और आज के समय में, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो बिल्कुल पत्रकारिता बदल चुकी है। तो ये इस तरीके से मेरा सवाल करने का मकसद था सर।
1: कोई बात जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन एक मैं वो परिभाषा वाली बात कर रहा था, और इसमें जो आपका और जो आज के समय पत्रकारिता का जो माध्यम है या उसको परिभाषित करने की बात है, परिभाषित आज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है जो एक जगह से दूसरी जगह के सूचना तंत्र को दूसरे तक पहुंचाना होता है, और उसके जो बीच के जो कार्य हैं वो पत्रकारिता होती है। आज के समय में लोग, क्योंकि आपका जो कहना है या जो पूछना है
0: जी,
1: वो यही है कि बदल चुकी है,
0: बदल चुकी है,
1: बदला कुछ नहीं है। पहले भी पत्रकारिता ऐसे ही थी, आज भी पत्रकारिता ऐसी है, जो शख्स अपने और दूसरों के विचार हैं
0: जी,
1: उन विचारों को रेखांकित करके
0: जी
1: या शाब्दिक करके
0: जी,
1: उन शब्दों को दूसरे कानों तक पहुंचाने का माध्यम जो है पत्रकारिता है। आज के समय में पत्रकारिता को हम मानते हैं टीवी चैनल, अखबार, वेब मीडिया
0: जी,
1: समाचार चैनल, ये जो है, या रेडियो चैनल, जिनके माध्यम से सूचनाएं
0: पहुंचती
1: हैं और पहुंचती हैं, आदान प्रदान जो होता है यही है। और अगर इसके अलावा आप और इसको खुल के कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप
0: मेरा मतलब ये था कि सर, ये अगर हम चीजें फिल्मों में भी देखें कि वो चीजें हमें मिलती हैं पुराने समय की फिल्मों में, एक कलम का सिपाही सच उसने देखा और सच लिखने के लिए वो तैयार है, और आज के समय में अगर कुछ उसने सच देखा तो या तो उसकी टीम मैनेजमेंट या कुछ और उसको कुछ और लिखने के लिए शायद कहा जाए, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा। या टीवी चैनल्स की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं भी खुद एक मीडिया का ही पार्ट हूं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम सबके लिए जानना समझना जरूरी है कि कितना परिवर्तन आया है, क्या हो रहा है। टीवी चैनल्स को जब हम देखते हैं, डिबेट शो हो रहे होते हैं, या दूरदर्शन की बात करें, जो दूरदर्शन बहुत तौर तरीके से डिबेट होती हैं, वहाँ चीखना चिल्लाना नहीं होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कप प्लेट नहीं तोड़ी जाती हैं, या कुछ गाली गलौज नहीं होता है, तो दूरदर्शन में तो हमने बहुत सादगी के साथ डिबेट्स देखी हैं, और दूसरे प्राइवेट चैनल्स में जब हम देखते हैं तो क्या ये टीआरपी का कोई खेल है या क्या होता है ये सर, ये समझना चाह रहा था मैं आपसे क्या होता है
1: ये गगन। एक अपने तरीके का लोगों ने जो हमारे समाचार माध्यम है, समाचार चैनल्स हैं, सबने अपना अपना, देखिए मुझे सादा थाली का भोजन अच्छा लगता है तो मैं सादा थाली का भोजन ही खाऊंगा, लेकिन किसी को उसी थाली में चिकन पसंद करता है तो चिकन खाएगा
0: जी।
1: अन्य इसी तरीके से सबके अलग अलग स्वाद और अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है
0: जी।
1: समाचार चैनल्स में जो समाचार दूरदर्शन हो या प्राइवेट चैनल्स हो, दूरदर्शन में जो कुछ दिखाया जाएगा वो मर्यादित होगा क्योंकि वो उस सरकार के अधीन होता है, उसका सब कुछ सरकार के अधीन होता है। और जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स होते हैं वो एक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अधीन होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन हाउस है या जो वो दिखाना चाहते हैं आपको, तो वो अपनी टीआरपी, क्योंकि टीआरपी नहीं होगी तो उनकी कोई खेती तो होती नहीं
0: जी। ये
1: वही उनकी कमाई है, ये वही उनका साधन है, जो फाइनेंशियल जो भी वहां से ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके अपने भी माध्यम है
0: जी जी।
1: लेकिन सच मायने में अगर पत्रकारिता को कहेंगे तो ये पत्रकारिता नहीं कह सकते।
0: क्या बात है, यही सर मैं चीजों को जानना या समझना चाह रहा था। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, या यूं कहूं कि जो एक साधारण व्यक्ति श्रोता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ उन विद्यार्थियों को भी रखना चाहूंगा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो कुछ करियर की बातें हैं वो मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, वाकई ये जो वार्तालाप हो रहा है बहुत अच्छी चर्चा हो रही है पत्रकारिता के बारे में, आज के समय की पत्रकारिता के बारे में, और पुराने समय में जो सर ने देखा, जो आज के समय में वो देख रहे हैं, इसका एक अंतर हम सर से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैं हमारे साथ श्री कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के सीईओ हैं। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, इसके तहत। और आज हम जो बात कर रहे हैं पत्रकारिता के संबंध में बात कर रहे हैं, करियर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मास्कॉम के स्टूडेंट हैं या ऐसे क्षेत्र में आना चाहते हैं, विद्यार्थी इस मास्कॉम के बनना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि शारदा विश्वविद्यालय आप आकर देखें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें और देखें कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और किस तरीके से ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं, जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कुलदीप शर्मा जी, लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के आप CEO हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मैं सीधे लफ्जों में यही जानना चाहता हूँ, बातों को हम नहीं घुमाते, हम ये जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार को किन किन खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उसको आगे लेकर जाना चाहिए, वो क्या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए।
1: गगन, वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और खास तौर से हमारे जो मास्कॉम के विद्यार्थी हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का क्षेत्र एक खाली पत्रकार होना ही नहीं होता, पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा एक बृहद क्षेत्र है, और उस बृहद क्षेत्र में बहुत सारे साधन हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। एक तो व्यक्तित्व उसका ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई दाग ना हो और ना ही कोई दाग लगे। निर्भीकता इतनी होनी चाहिए कि कोई दाग लगाने की कोशिश भी करे तो वो 100 बार सोचे, किसी भी कारण से अपने आप को कमजोर ना महसूस हो, और अपनी लेखनी की ताकत, शब्दों की मर्यादा, भाषा का नियंत्रण, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को कहूँगा कि अपनी इन सब विशेषताओं को बना के रखें और हमेशा पत्रकारिता के क्षेत्र को बढ़ा के रखें, कलंकित होने से बचाते रहें, क्योंकि कलम एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है
0: जी,
1: जहां एक छोटी सी बात से लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है।
0: सही का जी,
1: गोली से एक मर सकता है, दो मर सकते हैं, चार मर सकते हैं, बम ब्लास्ट से 100, 50, 200 लोग मर सकते हैं, लेकिन कलम बहुत लोगों को जिंदा कर सकती है, बहुत लोगों को मार सकती है। कलम का सही इस्तेमाल करें, लेखनी का, अपनी लेखनी के ऊपर विश्वास रखें, अपनी भाषा का नियंत्रण रखें, अपने आप में नियंत्रित रहें, और इन्हीं सभी अच्छी विशेषताओं के साथ पत्रकारिता करें। मेरा सभी को यही अनुरोध है और यही मेरा सुझाव है।
0: बहुत अच्छा सुझाव सर, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी, जो कि एक बात का निचोड़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन बातों को याद रखेंगे, गांठ बांध कर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका काम बोलेगा, आपकी एक अपनी पहचान

0: होगी और इस तरीके से आप जिंदगी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। तो सर कुछ और अगर आपको लगता है कि गगन आपकी तरफ से ये बात छूट रही थी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके अपनी मन की बात तो आप भी अपने मन की बात रख सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने तो अपने मन की बात कम समय में ध्यान रखते हुए आपसे जान ही ली है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मेरा अपना एक कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और अपने विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से एक तो बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और सभी अपने मास कॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं या हमारे जितने भी श्रोता हैं, मैं सभी श्रोताओं को जो मन में ये लेके बैठे हों
0: जी
1: कभी कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले आपने कहा था कि मेरा मोह भंग हो गया,
0: जी जी
1: ऐसा क्षेत्र नहीं है। पत्रकारिता एक बहुत अच्छा बृहद क्षेत्र है और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और स्तंभ हमेशा मजबूत होता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और वो हमेशा मजबूती के साथ अपने लोकतंत्र को या छत को या जिस को भी वो अपने कंधे पे रख के खड़ा रहता है। तो कृपया मैं सभी अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मान दें, सम्मान दें, क्योंकि वो आपका ऐसा माध्यम है कि आपकी बात सुनता है और जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंचाता है।
0: बहुत खूब, बहुत।
1: पत्रकारिता क्षेत्र के सभी साथियों को, बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, अपने विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र में कार्यरत सभी साथियों को यही कहूंगा कि इस पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ है मजबूती के साथ हमेशा बनाए रखें और इसका मान सम्मान मर्यादा सभी का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत बहुमूल्य बातें आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे एक छोटा सा वादा जरूर लूंगा, जब भी आपको समय मिले आप जरूर हमारे स्टूडियो आएगा ताकि और अच्छी बातें हो सकें आपके साथ।
1: मुझे जब भी शारदा FM मुझे बुलाएंगे और जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे मैं अवश्य आपके साथ आऊंगा और आपके पास जो भी आप मेरे से कहेंगे मैं करूंगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो आई होप लिसनर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यहां हमने पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में बात की, विद्यार्थियों के बारे में बात की, ये किस तरीके का क्षेत्र है, अगर आप यहां आते हैं तो किस तरीके से अपने आप को आप आगे लेकर जा सकते हैं, अपने भविष्य को किस तरीके से संवार सकते हैं। ये सारी बातें हुई लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के CEO श्री कुलदीप शर्मा जी से। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, 0120406025 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर, और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलेगा। और इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको आप कहीं पर भी सुन पाएंगे। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: बहुत बहुत नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
4: आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ठगी से कैसे अपने आप को बचा कर रखें? सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी सलाह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया विज्ञापनों या अनजान लोगों से मिले निवेश की सलाह पर कभी आप लोग भरोसा ना करें, यकीन बिल्कुल भी ना करें। अनजान लिंक या एपेक फाइलों से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। आधिकारिक स्रोतों पर सेबी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि आप करें। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर डिजिटल अरेस्ट स्कीम की पूरी जानकारी, यानी कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का धोखा है, धोखाधड़ी है। इसके अंतर्गत बात निकल कर ये सामने आती है कि इसमें जो अपराधी है वो फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पुलिस या सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करके लोगों को डराने का वो काम करते हैं, और वो पीड़ित को बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल। स्कैमर कहता है कि आपसे पूछताछ की जाएगी, जिसका मतलब है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही कॉल कट कर सकते हैं, और पीड़ितों को कई घंटों या यूं कहें कि कई दिनों तक कॉल पर ही उलझाए रखते हैं ताकि उनके मन में डर और घबराहट पैदा हो जाए। कभी कभी वो वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनते हैं या असली दिखने के लिए नकली पहचान पत्र या यूं कहें कि आईडी कार्ड्स वो लोग दिखाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को सूचित करें, और जो नंबर मैंने आपको बताया 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा cybercrime.gov.in पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।

मुझसे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: यहाँ 45 मिनट योग करने से बीमारियाँ दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह

कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महामारी के दौरान टैम्पोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
1: ये कुछ विशेष प्रकार के टैम्पोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
0: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
0: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सुनो शारदा,
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखिए। इस प्रकार के जो फ्रॉडर हैं, जो धोखेबाज हैं, वो एक व्यक्ति को अगर पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या वो पीड़ित व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है, तो उनसे पैसे के लेन देन की जांच करवाने के लिए या मामले को चुप या रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि बैंक ट्रांसफर, UPI या क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो रुपया मांगते हैं। पैसे मिलते ही जालसाज लोग गायब हो जाते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कभी भी किसी मामले को बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत फोन काट दें। अपनी कोई भी निजी जानकारी आप साझा ना करें। अगर आप किसी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो फिर मैं दोहराता हूं, 1930 पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उन लोगों का हथियार ये है, डर उनका हथियार है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। तो बहुत सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दी। बस फर्ज आपका बनता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और एक लाइन हमेशा याद आती है जो अक्सर हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुनते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरी शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। जब इसकी कमी होती है तो शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कमजोरी महसूस होने लगती है। इसे आम भाषा में खून की कमी भी कहा जाता है। राम राम, दोस्त सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। और आज का जो विषय है आप समझ ही गए, खून की कमी यानी कि अनीमिया के विषय के बारे में बातें होंगी। ये जो विषय सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शालू गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं और इनसे बात कर रही हैं स्मार्ट की सहयोगी सुजाता। तो आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
3: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
3: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि

0: ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
1: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
0: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में, जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
1: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
0: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
0: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
1: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
0: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
0: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
0: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली,

0: देश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो पीएचसीज हो, सीएचसीज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहां सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जिसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
1: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है।
0: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
0: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है, और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित है उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सके, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से?
0: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके, आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM, एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि, या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो एफसीएम का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर सीएससीपीएससी पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या एएनएम्स हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शालू गुप्ता को, इनसे बात कर रही थी स्मार्ट की सहयोगी सुजाता। सब्जेक्ट था एनीमिया, यानी कि खून की कमी। अगर खून की कमी हो रही है तो दिक्कतें परेशानियां हम सब के शरीर में हो सकती हैं। खून की कमी ना हो इसके लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, यानी लोहा शरीर में, विटामिन बहुत ज़रूरी है, और भी इस तरीके से जो आप के शरीर के लिए लाभकारी है वो सारी चीज़ें आप खाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आप ले पाएंगे। कहने का आशय यही है कि खून की कमी आपके शरीर के अंदर ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं ₹1,000 प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा।

0: इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंद का सेवन कर सकते हैं। शकरगंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरों शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अरे कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCO में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: जंगल है, आधी रात है।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है

एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है, और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि
की आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, इस दुनिया में इंसान ही इंसान के काम आता है, ये आप बखूबी जानते हैं और ये अनुभव भी आपने किया होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपसी संबंधों, प्रेम और सद्भाव का मानव जीवन में काफी महत्व है। आप दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे, वैसी ही छवि सामने वाले के मन में आपके प्रति बनेगी। इसीलिए दूसरों से प्रेम और सद्भावपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि आपकी छवि सुशील और संस्कारी मनुष्य की बने। हम किसी से जब भी मिलें तो मुस्कुराकर ही सामने वाले का स्वागत करें। मुस्कुराहट से सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो हमारी तरफ आकर्षित होता है और वो हमसे बात करना चाहता है। आपस में बातचीत करने के दौरान व्यक्ति की वाणी में मिठास होना चाहिए। मधुर और शिष्ट आवाज से सामने वाला भी प्रभावित होता है। जरा सोचिए कि हम इस संसार में आए हैं तो क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाएंगे। सब का सब यहीं पर रह जाएगा। अतीत से अब तक हमने देखा है कि कई राजा और रंक आए और सब के सब धूल में मिल गए। कोई कुछ लेकर गया है क्या? और दूसरी तरफ एक और बात है, किसान मित्रों के जिन जिन का नाम जीवित है तो वो उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही जीवित है, ना कि उनकी धन दौलत के कारण। समाज, घर परिवार में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी के किसी भी पल में तो सभी चले आते जाते रहते हैं। किसान मित्रों, समाज और घर परिवार में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी का कोई भी अवसर, तो इन सब में तो सभी आते जाते रहते हैं, पर व्यक्ति के दुख में सम्मिलित होना भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। और सामाजिकता के नाते हमें व्यक्ति का दुख बांटना चाहिए। किसी के दुख में सम्मिलित होकर दुखी परिवार को सांत्वना देना, ये कहना है कि चिंता ना करें, ईश्वर और हम आपके साथ हैं। तो जो दुखी परिवार होता है ना, उसको बहुत अपनेपन का एहसास होता है और उसका जो दुख है वो बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार हम आपसी प्रेम और सद्भाव से हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश सुन रहे थे। किसान मित्रों, अक्सर आपके सामने एक समस्या जरूर आती होगी। कोई भी फसल आप करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं अवशेष बच जाते हैं। अब उसका प्रबंधन है वो कैसे किया जाए। कम फसल होती है तो उसका तो ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई बड़ी आसानी के साथ तो उसका प्रबंधन कर देते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी कई तरीके हैं उस तरह से उसका प्रबंधन कर देते हैं। लेकिन आपके पास जमीन ज्यादा है, यानी कि आप फसल ज्यादा जमीन पर करते हैं, और उसके जब फसल अवशेष होते हैं तो उनका प्रबंधन करना एक सिरदर्द आपके लिए बन जाता है कि आपको उस फसल का निपटारा भी करना है, प्रबंधन भी करना है, और साथ ही साथ अगली जो फसल है उसकी तैयारी भी करनी है, तो एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में आप आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर के फसलों के जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ तकनीकों के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि जो तकनीकी हैं उनका इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपनी फसलों के अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान मित्रों, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए कई समाधान प्रदान करती है, जिसमें रोटरी डिस्क ड्रिल जैसी मशीनों का उपयोग शामिल है, जो फसल अवशेषों को जलाने के बजाय सीधे बीज बोने में मदद करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा मल्चिंग डिकम्पोजर का उपयोग और जैव ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकियां जैसे गैसीकरण और ब्रिकेटिंग भी अवशेषों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए, निस्तारण के लिए जो आधुनिक तकनीकियां हैं, मशीनें हैं, वो कहां पर मिलती हैं, कैसे आप इनको ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो मशीनें वो तो बहुत सारी महंगी हो गई, और हर किसी किसान भाई के बस में ये बात नहीं है कि वो उन मशीनों को खरीद पाए। अगर हाँ, किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी की योजना भी चलाई जा रही है, जिसका वो लाभ ले सकते हैं। और पराली प्रबंधन है या आपकी जो फसलों

के अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए जो भी मशीनें आ रही हैं उनकी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप इनको खरीद सकते हैं। अब जानकारी कहाँ पे मिले कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ पे होती है और कैसे इन मशीनों को खरीदा जाए, तो सबसे अच्छा इसका उपाय यही है कि आपके पास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाकर के आप संपर्क करिए। अब बात आती है वो हमारे किसान बहन भाई जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कैसे इन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने फसलों के अवशेष प्रबंधन में करें, तो उसके लिए सरकार ने कस्टम हायर सेंटर बनाए हुए हैं जहां पर आप कोई भी कृषि उपकरण जाकर के ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल करने के बाद आप वहां पर उसको जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कृषि कार्य कर सकते हैं और अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान मित्रों, आगे आपको ये भी बताएंगे कि फसलों के अवशेष प्रबंधन से क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक रागनी कलाकार हैं प्रियंका चौधरी और किस्सा रहेगा गोपी चंद का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये रागनी और किस्सा था गोपी चंद का। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि फसलों के अवशेष का प्रबंधन क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम फसलों के अवशेष का प्रबंधन नहीं करते हैं, अगली फसल की जल्दबाजी में हम उनको जला देते हैं, तो उससे हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है और उसका प्रभाव फिर हमारी फसलों पर, हमारे स्वास्थ्य पर और पता नहीं कितनी जगह पर फैलता है। तो तकनीकी तरीके से हम अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करते हैं तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए धान की पराली है, उसका प्रबंधन आप कर रहे हैं तो उसको आप चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल चीजें बनाई जा रही हैं धान की पराली से, तो वहां पर बेच करके आप पैसा भी कमा सकते हैं, तो आपका ये भी फायदा हो जाएगा। और फसल अवशेषों का खाद के रूप में इस्तेमाल हम जब करते हैं तो हमारे जो खेत की मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और इसके अलावा कृषि अवशेषों को जैव ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किसान मित्रों, कहने का मतलब यही है कि जब आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने फसल के अवशेषों के प्रबंधन में करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है। और इस तकनीक में जो भी मशीनें हैं या कृषि यंत्र हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं फसलों के अवशेष प्रबंधन में, तो उनकी सारी की सारी जानकारी आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फसलों के अवशेष प्रबंधन की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी। किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र

0: में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Bingo on Malaysia card, the end. Chicken Gunya card, the end. Dimagi Bukhar ka, the end.
1: Tara! तुम कर क्या रही हो तारा?
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: अक्षरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नवोदय स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे। जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं, भ्रूण हत्या, लिंग अनुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज। दूसरा विषय बालिका या वधू, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ मुझे बाहर जाना है, इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा। विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा, यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें, कैसे बचे मनचलों से, बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत, दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा। अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार, यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार, ये कुछ ऐसे विषय है, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो शारदा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ, यानी सुनो शारदा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो एमिटी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

0: खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रही हूँ श्रेया। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे शो पर, जिसका नाम है हिंसा को नो। नारी सशक्तिकरण के इस दौर में पितृसत्ता एक ऐसा शब्द है जिसको समझना आज के दौर में जरूरी है। दरअसल ये उस जाल की तरह है जिसमें चिड़िया जरूर फंसती है और फिर कभी निकल नहीं पाती, मगर पितृसत्ता का जाल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसमें औरतें ताउम्र कैद रहती हैं, कभी परिवार की मर्यादा के नाम पर, तो कभी समाज के डर से, तो कभी उसे पुरुषों से कमजोर बताकर। यह कुल मिलाकर नारी को पहले पिता और भाई, फिर पति और अंत में बेटे के अधीन बनाकर उसके इच्छाओं, सपनों और अधिकारों को कुचलने का सदियों पुराना कुचक्र है, जिसे आज तक तोड़ने की कोशिश कर रही हैं भारतीय महिलाएं। हमारे समाज में कई तरह की असमानताएं हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता भी उनमें से एक ही है दोस्तों। आमतौर पर पितृसत्ता इसी असमानता को बनाए रखने के लिए होता है। महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा के पीछे पितृसत्तात्मक विचारधारा है। अगर पितृसत्ता है तो औरतों पर हिंसा होगी ही, उसके बिना ये व्यवस्था चल ही नहीं सकती। पितृसत्ता के कारण ही पूरी दुनिया में औरतों पर हिंसा हो रही है और दुनिया के किसी भी देश में स्त्री पुरुष समानता नहीं है। इसलिए स्त्री पुरुष समानता बनाए रखने के लिए और हिंसा मिटाने के लिए पितृसत्ता को गहराई से समझना और उसे जड़ से मिटाना जरूरी है। आइए जानें क्या है पितृसत्ता। पितृसत्ता एक पुराना शब्द है जिसका मतलब है पिता की सत्ता, मगर आज इस शब्द का अर्थ पुरुष सत्ता है, क्योंकि पितृसत्ता केवल परिवारों में ही नहीं और केवल पिता ही औरतों पर हावी नहीं है। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को स्त्रियों से उत्तम माना जाता है। जैसे परिवार के मुखिया पुरुष है, वंश का नाम उनसे ही चलता है, परिवार की संपत्ति पर उनका ज्यादा अधिकार है, उन्हें हर तरह की आजादी है, सामाजिक संस्थानों पर उनका अधिक से अधिक अधिकार है। आइए जानते हैं लड़कियों और महिलाओं के जीवन में कहाँ है पितृसत्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रही हूँ जानवी और आज मैं आपके सामने अपनी एक बात रखना चाहूंगी। मैं भी एक लड़की हूँ और मैंने अपने जीवन में कई जगह पितृसत्ता देखी है। एक लड़की होने के कारण जब भी मुझे मंदिर जाने से रोका जाता था तब मैं हमेशा सोचा करती थी कि ऐसा क्यों होता है। जब बड़ी हुई तो पता चला सिर्फ महावारी के समय ही नहीं बल्कि वैसे भी कई मंदिरों में महिलाओं के जाने पर रोक है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां लड़कियों और महिलाओं के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। यह प्रथा कितने सदियों से चली आ रही है और आज के समय में भी कई जगह देखी जा सकती है। जहां आजकल लड़कियों लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहां आखिर ये भेदभाव क्यों? मैं इस पितृसत्ता प्रथा को खत्म होते देखना चाहूंगी।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रही हूँ रागिनी भाटिया और आज हम बात करने जा रहे हैं कहाँ है पितृसत्ता, पर क्यों आज ये सवाल है जब लोगों की सोच का दायरा तो बड़ा ही नहीं है। बदला तो केवल समय है जिसके चलते पितृसत्ता ने नया रूप ले लिया है और नारी सशक्तिकरण का दौर चल पड़ा है। ये नया रूप आप अर्बन वर्ल्ड के लिबरल घरों में जरूर देख सकते हैं, बाकी सब जगहों पर तो बात एक जैसी ही है। पिता, भाई, पति पितृसत्ता के कुछ मुख्य किरदार हैं जिनका दबाव हम पर हमेशा बना रहता है। यही लोग हैं जो दुनिया को शैतान और खुद को भगवान बना देते हैं। महिलाओं और लड़कियों के आत्मविश्वास को भारी ठेस पहुंचाकर यह लोग सर्वे सर्वा हो जाते हैं। पितृसत्ता आदमी और औरत के बीच असमानता बना देता है और महिलाओं से आगे बढ़ने का मौका ही छीन लेता है। घर हो या स्कूल, कंसेंट पिता का ही पूछा जाता है, जो पत्थर की लकीर हो जाता है। क्यों माता जी से पूछे बिना ही सब कुछ तय हो जाता है?
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तमकिनत है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पितृसत्ता हमारे समाज की एक ऐसी कुरीति है जो कि सदियों से चली आ रही है। इसकी जड़ें बहुत ही मजबूत हो गई हैं। इस कुरीति से मैं भी अछूती नहीं हूँ। इसकी जड़ें मेरे भी घर में कई पीढ़ियों से हैं। मेरे भी घर में पापा या दादाजी के अनुसार ही बहुत सी चीजें होती हैं। हमें हर छोटी बड़ी चीजों के लिए उन्हीं से अनुमति लेनी होती है और उन्हीं के अनुकूल कार्य करना होता है। मैं इस कुरीति की निंदा करती हूँ और इसे हमारे पुरुष प्रधान समाज से हटाना चाहती हूँ।
0: एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हर पल पितृसत्ता के अलग अलग रूपों से रूबरू होती हैं। अब बात चाहे तरह तरह के आधारों पर भेदभाव की हो या आजादी में बिना वजह कटौती और सुविधाओं में भारी कमी की हो, ये सभी पितृसत्ता के ही पहलू हैं। पितृसत्ता में महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक होती हैं, जहां एक तरफ उन्हें घर के ज्यादा से ज्यादा काम का जिम्मा लेना होता है, वहीं

0: काबू किया जाता है। वे क्या पढ़ेंगी और क्या काम करेंगी, उन्हें काम करने भी दिया जाएगा या नहीं, उनके काम का क्या दाम होगा। परिवारों के अंदर सुबह से शाम तक औरतें जो काम करती हैं, उसे आज भी आर्थिक गतिविधि या काम नहीं माना जाता। उनकी शादी कब होगी, वे कब और कितने बच्चे पैदा करेंगी, वे खुद तय नहीं करती। पहले परिवार और समाज तय करते थे, अब सरकारें भी कानून बनाकर तय करती हैं। औरतों की यौनिकता पर भी औरों का नियंत्रण हो सकता है, जैसे कम उम्र में शादी करके उनकी यौनिकता पर नियंत्रण पुरुषों को सौंप दिया जाता है। लड़कियों और औरतों पर काबू पाने के लिए उनके चलने फिरने पर रोक लगाना जरूरी है, और ये किया भी जाता है। लड़के और पुरुष कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, मगर औरतों पर पाबंदियाँ होती हैं। पितृसत्तात्मक समाज में ये माना जाता है कि पुरुष को घर के लिए पैसे कमा के लाने होते हैं और औरत को घर और बच्चे संभालने होते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के विचारों को नहीं सुना जाता, उन्हें बोला जाता है कि उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके घर के मेल मेंबर्स कमा रहे हैं। ऐसे समाज में महिलाएं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती और न ही खुद से कोई कदम उठा सकती हैं। उनके पास अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं होता। उन्हें बोला जाता है कि उन्हें सर झुका के चलना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, सबसे आगे बढ़ के माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पितृसत्ता पुरुषों को भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना कि महिलाओं को। लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो स्ट्रांग है, उन्हें दर्द नहीं होता, और जो लड़का रोता है वो मर्द नहीं होता। ये सब चीजें टॉक्सिक मस्कुलिनिटी में बदल जाती हैं। लड़कों को समझ नहीं आता कि वो अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करे। आखिरकार वो अपना गुस्सा औरतों पे उतार देते हैं। इस सोच के अनुसार लड़के कुकिंग नहीं कर सकते, पिंक कलर नहीं पहन सकते, औरतों को आदर्श नहीं बना सकते, घर पे बैठकर बच्चों का ध्यान रखने का निर्णय नहीं ले सकते और अपनी सेंसिटिव साइड भी नहीं दिखा सकते। यही कारण है कि मेन में विमेन से ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा समाज बदल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं पितृसत्ता के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एक छोटे से ड्रामा की ओर।
1: राजेश्वरी बदुआ नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बहुत गरीब घर से थी। रमेश और उसके घर वाले बहुत अमीर थे। वो राजेश्वरी का हाथ मांगने आए थे। सोचा था गरीब घर की लड़की लेंगे तो दब के रहेगी। राजेश्वरी के घर के हालात ठीक नहीं थे। उसके माँ बाप बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमा पाते थे। उन्होंने सोचा राजेश्वरी की शादी अगर रमेश से हो गई तो बेटी कम से कम सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करेगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, और वो शादी के लिए मान गए। शादी तो हो गई, लेकिन राजेश्वरी की जिंदगी बदल गई। आखिर हुआ क्या, चलिए सुनते हैं।
0: सुनिए जी, आजकल बाजारों में सेल लग रही है, कपड़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मैं सोमा के साथ बाजार चली जाऊं?
2: बाहर घूमने का ख्याल कैसे आया तेरे मन में? घर में कितना काम पड़ा है, देख नहीं रही है? अब तू अपने माँ बाप के घर में नहीं रहती है, अब तू मेरे घर में रहती है, या मेरा राज चलेगा। नहीं जाना बाजार, घर का काम खत्म कर और फिर आके मेरे पैर दबा। देख नहीं रही है, सुबह से काम कर करके कितना थक गया हूँ मैं।
0: जी अच्छा।
1: अपनी पति की बातें सर आंखों पर रख कर राजेश्वरी उसकी हर बात मानती। शादी से पहले उसके माँ बाप ने भी समझाया था कि पति की हर बात मानना बेटी। पति परमेश्वर के समान होता है, जैसा उसे सिखाया गया वो बिल्कुल वैसा ही करती। अपने बारे में तो सोचना उसने जैसे छोड़ ही दिया था। कुछ समय के बाद उसे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। और फिर आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं।
3: अरे बधाई गाओ, मेरे घर का चिराग आया है। रमेश के बाद इसी का तो सब कुछ है। हाय लल्ला, नजर ना लगे मेरे पोते।

0: सासू माँ, अपनी पोती का तो मुंह देख लीजिए।
1: इसको देखकर मैं क्या करूँगी है? इसने तो कल को शादी करके दूसरे घर चला जाना है, चौका चूल्हा संभालना है, और इसके साथ दहेज जोड़ो सो अलग। इसे तो तू ही रख, निहारती रह इसका चेहरा। हाय, मैं जरा अपने राजकुमार की नजर उतार लू। हाय मेरा चांद सा टुकड़ा, मेरा पोता जिगर का टुकड़ा। अरे सब ऐसे ना देखो, नजर लगा दूंगी काम अरे लल्ला को।
2: कुछ समय बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे। जहाँ एक और लड़की अच्छे नंबरों से पास होती, वही दूसरी ओर लल्ला यानी कि जो लड़का है, वो लाड प्यार में पला हुआ बिगड़ा शहजादा हर बार फेल होकर आ जाता और पिताजी से माफी मांग लेता। तो चलिए कहानी में आगे क्या हुआ सुनते हैं।
3: पिताजी, आज मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। सिनेमा हॉल में बड़ी धमाकेदार पिक्चर लगी है, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, क्या मैं भी जाऊं?
4: हाँ बेटा बिल्कुल जा, ले थोड़े से पैसे और ले जा, पूरी ऐश करके आना। समय देखने की कोई जरूरत नहीं है, आज तेरी परीक्षाएं खत्म हुई है ना, मेरी तरफ से तेरे को पूरी छूट है। जहाँ जाना है जा, घूमना है घूम, अपने दोस्तों के साथ जा।
3: शुक्रिया पिताजी, आज तो मजा आ जाएगा, सारे दोस्त देखते रह जाएंगे।
0: पिताजी मुझे भी कुछ पैसे चाहिए, किताबें लेनी है, मुझे पिक्चर नहीं देखनी, किताबें पढ़नी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे किताबें पढ़ना, मुझे पैसे दीजिए ना।
4: ये फालतू के पैसे खर्च करने का समय नहीं है मेरे पास, पढ़ने लिखने से क्या होगा, तू अंदर जा और जाके अपनी माँ से खाना बनाना बनाना सीख, ये खाना बनाना ही तेरी शादी के बाद काम आने वाला है। पति की खुशी का रास्ता पेट से होके गुजरता है, अच्छा खाना बनाना सीखेगी, पति भी खुश रहेगा और ससुराल वाले भी। किताबें विताबे छोड़ और अपना चूल्हे चौके में ध्यान दे।
0: जी पिताजी।
2: तो सुना आपने कैसे राजेश्वरी ने हमेशा अपनी इच्छाएं मारी और अपने पति की खुशियों को आगे रखा, हमेशा अपने पति की खुशियों का ख्याल रखती रही। वैसे ही उसकी बेटी ने भी अपने सपने चूल्हे की आग में झोंक दिए, लेकिन आखिर कब तक, कब होगा इस पितृ सत्ता का अंत, कब एक नारी खुल के जिएगी, आखिर कब तक वो अपना मन मारती रहेगी। अब समय आ गया है कि हम पितृ सत्ता को खत्म करने के बारे में सोचें, और सिर्फ सोचें ही नहीं बल्कि एक कदम आगे बढ़ाएं। और ये तब हो सकता है जब हम लोग जेंडर की बेड़ियों से मुक्त होंगे और उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने देंगे। हमें अपने बच्चों पे उनके जेंडर यानी लड़का है लड़की है इस वजह से पाबंदियां लगानी नहीं चाहिए। हमें उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लड़के हो या तुम लड़की हो इसलिए तुम ये काम नहीं कर सकती।
0: पिताजी अब आपको समझना होगा कि लड़का लड़की बराबर हैं, दोनों एक समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है लड़का और लड़की में। रही बात ससुराल की पति की खुशियों की, तो इन सब के बारे में मैं तब सोचूंगी जब इसका समय आएगा। अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैंने साथ ही साथ ये भी सोच लिया है कि मैं ट्यूशन लूंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, क्योंकि पढ़ना और खुश रहना मेरा अधिकार है।
2: शाबाश, ये हुई ना बात। अब आया ना कहानी में असली ट्विस्ट। जी हाँ, अब समय आ गया है कि हर महिला, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो, उसे समझना पड़ेगा कि वो खुद समान है। समानता का अधिकार कोई और आपको नहीं देगा, बल्कि आप खुद से खुद को देंगे। आप सब बराबर हैं। हम सब में वो सारी सक्षमताएं हैं कि हम खुद को समाज में आगे बढ़ा सके, और पढ़ना, खुद को स्वावलंबी बनाना, ये भी हमारा अधिकार है हर औरत का। तो चलिए, जैसे हमारी प्यारी बिटिया ने आज एक कदम उठाया है शिक्षा और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ओर, हम सब भी अपने आसपास अगर कोई ऐसी लड़की है जिसको हम समझा सके, उसके अंदर की ताकत को उसे दिखा सके, तो क्यों ना इस कहानी को सबको सुनाएं और बात करें। आगे बढ़ने की, समानता की। और पितृसत्ता, अब समय है कि उसको खत्म करें और समानता की कहानी को आगे बढ़ाएं।
5: चलिए दोस्तों, अब पितृसत्ता को एक कविता के माध्यम से समझते हैं। आइए सुनते हैं।
6: काम करते करते एक उम्र बीत गई, सम्मान की चाह में पहली रात बीत गई। ना लाज रख पाई, ना बचा पाई खुद को, ना उम्मीद बची, ना संभाल पाई तुझको। इस समाज का ईमान डूब गया, अंधेरे में छुपा शीशा भी सच बोल गया। मैं मालिक की सुनता हूँ, उन्हीं की सुनूंगा। तुम शोर ना मचाओ, तुम्हें भी मालकिन कहूंगा। तुम अपनी नहीं चलाओगी, बस पतिव्रता ही कहलाओगी। पुत्री को भी यही समझाओगी कि सुने वह केवल आदमी की, करे ना मनमानी अपनी, बनाकर रखेगा रानी अपनी। मैं सच सुनते ही डोल गई, निराशा मुझ पर धावा बोल गई। सह गई मैं सारा कुछ, पुत्री को कैसे समझाऊंगी, सम्मान की चाह जो मैंने दबाई, मासूमियत कैसे छीन पाऊंगी। उसकी आवाज कानों में पड़ी तो मैं सारे गम भूल गई। उससे ना दूर रखूंगी, जिन चीजों से मैं दूर रही। बनेगी वह जो बनना चाहे, दुआ करती हूँ उससे ना कोई गम सताए। जान न्योछावर उसके ऊपर से, चली जाऊंगी गर्व से पटरानी नहीं, मैं एक बेटी की माँ कहलाऊंगी।
5: मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम हिंसा को नो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोग इसे अपने समुदाय के साथ भी साझा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसे तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे। इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें। साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का, जिसने हमें ये सहयोग दिया। और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लगती है।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो शारदा।
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।

0: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
0: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख कर चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखना है हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समझिए, देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम एक बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, फिर में जो है सब ज़्यादा परेशान जाते हैं।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: की जगह मिल जाए। लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक
0: हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर कहीं आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए तो टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
1: एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है ये, किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है, जितना हो सकता है ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेकर चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेकर चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR

बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है, और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊँगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और खास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहां से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहां पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
3: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। आप सब मिलकर लिखते हैं,
2: खोने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था वो समय, इंसान और संबंध।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है श्रोताओ, किसी वस्तु के खोने के बाद ही हमें उसके असली मूल्य का पता चलता है। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर।
3: पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये और तन्मय गजभिये।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो प्रस्तुत है हमेशा की तरह हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी, पहले श्रोता मित्रों को धन्यवाद दे दें कि ये भी जानिए श्रृंखला को उन्होंने बहुत बहुत सराहा है।
2: जी अजीत जी, सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं ये भी जानिए श्रृंखला के प्रति आपकी सराहना और रुझान के लिए। धन्यवाद श्रोताओं।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में श्रोताओं, आज हम एक बड़ी रोचक बात करेंगे।
2: जी श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी सब्जी की जो हमारे देश में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके बिना अक्सर हमारा भारतीय भोजन पूरा ही नहीं होता।
3: जी ये तो है।
2: तो उत्तर भारत का भोजन हो या दक्षिण भारत का, जरा सोचिए आपके मन में किस सब्जी का नाम आता है। सोचिए।
3: तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बता देते हैं, यदि आपके मन में आलू का नाम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं।
2: जी
3: लेकिन यदि हम आपको आज ये बताएं कि आलू दरअसल भारतीय सब्जी है ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा झटका तो जरूर लगेगा।
2: बिल्कुल, अगर पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है तो मुझे लगता है नाम आलू का ही आएगा।
3: बिल्कुल,
2: लेकिन आलू मूल रूप से भारत की उपज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं कहानी आलू की और जानते हैं कि आलू कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, कृषि का इतिहास बताता है कि आलू की खेती आज से 8000 साल पहले दक्षिण अमेरिका में, विशेष रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला के पेरू और बोलिविया क्षेत्रों में शुरू हुई थी। हो रहा है ना आश्चर्य। अब सवाल उठता है कि फिर आलू भारत में कैसे आया।
2: तो आपको बता दें कि आलू भारत में यूरोप के व्यापारी लेकर आए। दस्तावेज बताते हैं कि भारत में आलू का आगमन मुगल बादशाह जहांगीर के समय में हुआ।
3: भारत में 16वीं शताब्दी तक किसी भी किताब में आलू का जिक्र नहीं मिलता है।
2: जी।
3: आपको विश्वास नहीं होगा कि खिलजी साम्राज्य में नियतनामा नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी।
2: इस पुस्तक में विशेष रूप से उत्तरी भारत के खान पान का इतिहास है। इस किताब में 8 प्रकार के समोसों का जिक्र मिलता है, लेकिन आलू का उल्लेख कहीं नहीं है। तो फिर से वही सवाल, आलू कहाँ से भारत में आया।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आलू को यूरोपियन पुर्तगाली व्यापारी भारत लेकर आए और उसकी खेती पश्चिम भारत और नैनीताल में करनी शुरू की।
2: जी।
3: और आलू भारतीय संस्कृति और खान पान में ऐसा घुला मिला कि लगता है जैसे वो यहीं की पैदाइश है।
2: बिल्कुल, लोगों को पता ही नहीं है कि इसे लोकप्रिय करने में ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आलू की दुनिया भर में 4000 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। एक बड़ी रोचक जानकारी ये भी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू न तो सब्जी है न फल है।
3: तो क्या है?
2: ये एक तना है।
3: आलू एक तना है। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है,
2: आलू को भारत में लाने वाले कौन है?
3: विकल्प है स्पेन के व्यापारी,
2: पुर्तगाल के व्यापारी,
3: अंग्रेज व्यापारी
2: और दक्षिण अमेरिका के व्यापारी।
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आलू को भारत में लाने वाले कौन हैं?
3: विकल्प हैं
2: स्पेन के व्यापारी,
3: पुर्तगाल के व्यापारी,
2: अंग्रेज व्यापारी
3: और दक्षिण अमेरिका के व्यापारी।
2: 8800440559 है हमारा IVRS फोन नंबर
3: और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप अपना उत्तर हमें तत्काल इन संपर्कों पर भेज सकते हैं।
2: जी तो अब सुनते हैं आज के कार्यक्रम। तो सबसे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम साहसी सोनिया। साहसी सोनिया, श्रोताओं आपको बता दें कि भारत के उन बहादुर बच्चों के जीवन पर आधारित हमारी एक श्रृंखला है जिन्हें उनके साहसिक कारनामों के लिए भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कारों से जीवित या मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।
3: तो श्रोताओं, इसी कड़ी में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम साहसी सोनिया। तो आइए सुनते हैं बाल कन्या सोनिया।

0: कहो सुनिया बेटा, कैसी लगी अपनी जन्मदिन की पार्टी?
1: हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी पापा। यहाँ आराम में बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके साथ। काश मुझे पटना ना जाना पड़े।
2: पटना में तो तुम पढ़ती हो बेटा, वहाँ तो तुम्हें जाना ही होगा।
0: अच्छा सुनिया बेटा, अब जाओ और सो जाओ, रात बहुत हो गई है।
1: जी पापा।
2: मम्मी, सनत और शालिनी कहाँ है? उन्हें नींद आ रही थी बेटे, जब तुम लोग गाना गा रहे थे ना, तभी मैं उन्हें सुला आई थी।
1: तो ठीक है मम्मी, मैं भी जाती हूँ सोने।
0: अच्छा बेटे। मैंने कहा जी, हम भी आपकी कुछ मदद करवा दें, कुछ बर्तन उठा दें।
2: नेकी और पूछ पूछ। काम तो हम सबको मिलजुल कर ही करना चाहिए ना।
1: अरे मर गई।
0: क्या हुआ?
1: गैस पर पानी गर्म करने को रखाई थी और भूल गई। मैं अभी आई।
3: अच्छा सुनो, वो सिलेंडर ठीक करने वाला आया था कि नहीं?
1: नहीं, आज भी नहीं आया।
3: अच्छा ठीक है, तुम गैस को हाथ मत लगाना, मैं आता हूँ गैस बंद करने के लिए।
1: ठीक है।
4: हटो, एक तरफ हटो, मैं बंद करता हूँ। अरे एक तरफ हटो ना।
1: लो ना। अरे पीछे हट जाओ, सिलेंडर में आग लग गई है।
4: अरे पहले तुम हटो ना, बाहर निकलो।
5: कैसे लग गई आप घर में?
6: क्या हाल हो गया डॉक्टर आनंद के घर का भाई?
5: आनंद का तो बहुत बुरा हाल है। अरे सोनिया बेटे, ये सनत और शालिनी कहाँ हैं?
1: वो दोनों तो अंदर ही रह गए। चलो मैं भी लेकर आती हूँ। सोनिया, तुम मत जाओ, चारों तरफ आग लगी है। अरे रुक जाओ बेटी,
3: अरे अंदर झुलस जाओ।
1: मुझे कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं भी आती हूँ।
7: दीदी दीदी,
1: शालिनी ला इसे मुझे दे दे। तो मेरी पीठ पर बैठ जा, घबराने कुछ नहीं होगा, हम अभी बाहर निकल जाएंगे। हम अभी बाहर निकल जाएंगे।
5: घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा, भगवान करेगा, सब ठीक हो जाएंगे, चिंता।

0: मैं कहां हूं?
1: घबराओ नहीं बेटी, तुम अस्पताल में हो। तुम जल गई थी, अब तुम ठीक हो।
0: मेरी मम्मी पापा
1: सब लोग ठीक हैं। मम्मी बहन भाई
0: और मेरे पापा,
1: वो
0: क्या हुआ मेरे पापा को?
1: बड़े दुख की बात है बेटी, हम उन्हें बचा नहीं सके, ज्यादा जल गए थे।

जी हाँ, सोनिया, बिहार की रहने वाली ये नन्ही लड़की सोनिया केवल 12 वर्ष की ही तो थी जब स्वयं राष्ट्रपति ने उसे वीरता पुरस्कार दिया।

0: सोनिया, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। तुम्हें हमारी ढेर सी शुभकामनाएं।
1: साहसी सोनिया, अभी आपने सुना ही ये कार्यक्रम, और अब प्रस्तुत है उर्दू के महान शायर और साहित्यकार मिर्जा असादुल्ला खान गालिब के जीवन और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों का रोचक विवरण प्रस्तुत करता हुआ ये कार्यक्रम।
2: मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गालिब उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। वो इब्तिदा में असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब इख्तियार किया। उन्होंने उर्दू फारसी दोनों जबानों में शेर कहे हैं। उन्हें आम रास्ते से अलग नई राह बनाकर चलने का शौक था।

गालिब के कलाम को अमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी उनके अशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की जबान पर है।

मिर्ज़ा ग़ालिब में उर्दू नसर की अदबी शान, अपने ज़माने के हालात, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगु, गरज बहुत कुछ मिलता है, जिसके बाइस ग़ालिब हमारे सबसे बड़े शायरों में शुमार होते हैं।

0: दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ।
1: गौर करने की बात।
0: इस गजल में सादगी बयान और आम गुफ्तगु का अंदाज है और कहीं कहीं खुद कलामी का अंदाज भी है। खुद कलामी से मुराद अपने आप से बात करना है।
1: गालिब गजल के मुमताज शायर हैं। कम से कम लफ्जों में बात को कहना, सादगी के साथ साथ मानी की गहराई उनकी शायरी की अहम खसूसियात हैं।
0: दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। है खबर गरम उनके आने की, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। जान दी दी हुई उसी की थी, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सरा ना हुआ, आज गालिब गजल सरा ना हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ।

0: दूसरे मिसरे में लफ्ज अच्छा यूं तो बुरा की जिद है, लेकिन यहाँ ये लफ्ज सेहत याब होने के मानी में आया है। इस एतबार से अच्छा बुरा और हुआ ना हुआ अल्फाज एक दूसरे की जिद हैं। शेर की ये खूबी सनते तजाद कहलाती है।
1: हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस मिसरे में लफ्ज हक दो जगह आया है। इस लफ्ज के दोनों जगह अलग अलग मानी हैं। एक हक होना यानी सच और दूसरा हक अदा होना यानी फर्ज।
2: मिर्जा असादुल्ला खान गालिब, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अब सुनते हैं
3: हिंदी साहित्य के जाने पहचाने कवि रघुवीर सहाय की काव्य रचना तोड़ो पर आधारित ये कार्यक्रम।
2: श्रोताओं, इस कविता का भावार्थ ये है कि व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ना चाहिए, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए और परिवर्तन को अपनाना चाहिए।
3: ये कविता मनुष्य को अपनी रूढ़िवादी सोच और डर को त्यागने के लिए प्रेरित करती है और उसे स्वतंत्रता और विकास की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आइए सुनते हैं हमारी विशेष काव्य प्रस्तुति तोड़ो।
4: आवाजें चित्र खींचती हैं, बिंब रचती हैं। इन आवाजों को सुनकर भी आपके मन में कुछ चित्र उभरे होंगे। किसके चित्र उभरे? पत्थर तोड़ने, मिट्टी गोड़ने, खेत जोतने के ना? बिल्कुल सही।
5: तोड़ना एक क्रिया है। तोड़ने का अर्थ नष्ट कर देने से है, मगर हर समय तोड़ना बुरे अर्थ में नहीं होता। किसी चीज को नष्ट करना नहीं होता, तोड़ने के बाद ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अक्सर हम कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया रचने के लिए कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करते हैं। किसी वस्तु को सार्थक रूप देने के लिए भी उसमें तोड़फोड़ करते हैं। जैसे पत्थर से मूर्ति बनाते हैं तब,
4: फिर आपने तोड़ना शब्द का प्रयोग कई रूपों में सुना होगा। आप खुद भी तो ऐसा प्रयोग करते होंगे। परंपरा तोड़ने की बात तो अक्सर हम करते हैं। समाज के सारे बंधन तोड़ दो, रीति रिवाजों के बंधन तोड़ दो जैसे डायलॉग तो फिल्मों में खूब सुने जाते हैं। आप अपने दोस्तों से ऐसे डायलॉग नहीं बोलते क्या? फिर क्या, रघुवीर सहाय ने भी अपनी कविता में तोड़ना क्रिया का कुछ इसी रूप में प्रयोग किया है।
5: तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने
4: तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो।

0: कितनी सुंदर कविता है। मनुष्य का स्वभाव होता है निरंतर प्रगति करने का, विकास करते रहने का। वो एक जैसी स्थिति में बहुत देर तक नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ नया करने, कुछ नया रचने की बेचैनी उसमें रहती है। इसलिए भी वो बार बार पुराने को तोड़कर नया रचने की कोशिश करता है। मगर इस कविता में नया रचने के साथ साथ थोड़ा अलग भाव है। क्या
1: ये कविता केवल किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहती, एक बात के जरिए कई बातों की तरफ इशारा करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि झूठे बंधन टूटे, धरती को हम जाने, मैदानों में ऊब, मिट्टी में रस होगा ही जैसे पद इस कविता में कई बातों की तरफ इशारा करते हैं। धरती यहां प्रतीक के रूप में भी है, केवल अन्न उगाने का माध्यम नहीं। आपने भी तो ऐसे मुहावरे अक्सर सुने होंगे, अपनी जमीन पहचानो, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, धरती पर पांव रखकर चलो। इन सब में धरती वास्तव में धरती नहीं है। यह धरती मनुष्य की जड़ों का भी प्रतीक है, उसके मूल्यों का प्रतीक है, उसके जीवन की हकीकत का प्रतीक है। इसी तरह इस कविता में भी हम धरती को मनुष्य के मूल्यों, उसकी परंपराओं आदि के प्रतीक रूप में देख और व्याख्यायित कर सकते हैं।
0: इस कविता में एक पंक्ति आई है, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। कवि पथरीली ऊसर बंजर जमीन को खेती लायक बनाने की बात करते करते मन की खींच की बात करने लगा है। क्यों? मन के भीतर जो पत्थर है, जड़ता है, वो पुरानी ग्रंथियों से जकड़ा हुआ है, उसे भी तो तोड़ने की जरूरत है। इसलिए कवि ने अंत में गोड़ो गोड़ो गोड़ो का आह्वान किया है, यानी मन को भी, अपने हृदय को भी, अपनी सोच, अपने विचारों को भी गोड़कर वैसे ही उपजाऊ बनाने की जरूरत है जैसे किसान खेत को जोतकर उसे अन्न उगाने लायक बनाता है। अच्छा, अब आप ये भी तो याद करके बताइए कि ऐसी और कौन कौन सी कविताएं आपने पढ़ी हैं जिनमें तोड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विशेष काव्य प्रस्तुति तोड़ो। जरूर बताइएगा कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। तो इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
6: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि अगर महिला खुद सफल हो, सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ रही है, तो उसके पीछे सफलता का राज क्या है। जी हाँ, आज एक ऐसे ही खास विषय पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टार्टअप चर्चा के माध्यम से बहुत सारी बातें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में स्टार्टअप चर्चा के तीसरे एपिसोड में आज हमारे साथ कुछ ऐसी सफल उद्यमी, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिन्होंने मेहनत के बलबूते पर अपने आप को स्थापित किया है, अपना काम दिखाया है और अपना नाम बनाया है, एक ब्रांड बनाया है। जी हाँ, आज की जो थीम है वो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स, और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर दिव्या राजपूत, द स्टार्टअप पॉलिसी एक्सपर्ट एंड इनक्यूबेशन हेड एट JSS। दूसरी गेस्ट हैं डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, अ लीडरशिप एंड स्किल कोच, और हमारी आज की तीसरी मेहमान है मिस सुरभि गुलाटी गुप्ता, द इंस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर ऑफ अ विमेंस बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, और इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं, या यूं कहें कि मॉडरेटर हैं, मिस वाणी कपूर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन से। आइए सुनते हैं ये परिचर्चा कि कैसे जिंदगी में सफल हुआ जा सकता है, कैसे अपनी सोच को आगे लेकर जाया जा सकता है, कैसे किन किन परेशानियों से जूझते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफल इंसान बना जा सकता है। कुछ ऐसी बातें होंगी इस स्टार्टअप परिचर्चा के दौरान, तो आइए चलते हैं इस परिचर्चा की तरफ।
2: I welcome all listeners to Sharda Launchpad's special talk show called Startup Charcha at Suno Sharda Radio. आज हमारे साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम की दो दिग्गज महिलाएं हैं, डॉक्टर दिव्या राजपूत हु इज अ स्टार्टअप एक्सपर्ट एंड JSS इंक्यूबेशन हेड, एंड द अदर वन इज डॉक्टर सुरभि गुलाटी हु इज स्टार्टअप फाउंडर हरसेल्फ एंड शी ओन्स अ वुमेन्स बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। तो आइए, एंड आई एम योर होस्ट वाणी कपूर फ्रॉम शारदा लॉन्च पैड, एंड आज हम इन लोगों की जर्नीज के बारे में जानेंगे, इनके जो भी इन्हें एक्सपीरियंस रहे और इनके जो भी चैलेंजेस रहे, वी विल डेल्व डीप इनटू इट एंड वील नो मोर अबाउट इट। मैम, आपसे शुरू करते हैं। दिव्या मैम, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड योर जर्नी इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम।
3: थैंक यू वाणी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सो आई एम डॉक्टर दिव्या राजपूत, आई कम विद अबाउट 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। It's been in corporate, it's been in higher education, about 6 years in government and international organizations. And I joined JSS STEP, which is a, you know, Science and Technology Entrepreneurs Park in 2021. And it's been, you know, an amazing roller coaster ride with entrepreneurs since then. So, yeah, it's been an very interesting journey with them. Yes.
2: Surbhi ma'am, please, apni journey bataiye as a founder and, you know, being a women entrepreneur.
4: Firstly, thank you so much for having me here, Vani. So I have about 18 years of experience in the corporate, done mainly marketing in different companies, Indian companies, in B2C, worked in telecom, in international companies, in IT MNCs. And then I realized, let me, you know, work for myself for some time and see how things start. And that's when I started my startup called bakehoney.com in 2021. And after a year, I got incubated with JSS, and that's where I met Divya ma'am. And it's been going fairly well, lots of learnings, lots of new things that I felt that I know now how things work, but startups are a different ball game altogether.
2: So ma'am, आपके हिसाब से एक फाउंडर में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे एक वो सक्सेसफुल स्टार्टअप बना पाए?
4: सी, अगर आप ओवरऑल क्वालिटीज की बात करो तो लिस्ट इज गोइंग टू बी नेवर एंडिंग, बिकॉज विद एवरी न्यू डे यू लर्न समथिंग न्यू। बट आई थिंक वन मेन थिंग दैट अ स्टार्टअप फाउंडर नीड्स टू हैव इज एजिलिटी। You need to change your course of action every now and then. That's very important because the market

0: कि यू नो एंड वी एवरी डे हैव दिस डिस्कशन, यार इतना बड़ा फंड हम कैसे लेंगे, यू नो हाउ विल वी बी एबल टू स्केल अप दैट मच. एंड ही सेड यू आर नॉट रनिंग अ दुकान, इट्स अ स्टार्टअप, सो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट. एंड दैट्स वेयर आई फील वी हैव वन थिंग टू लर्न एज वुमेन, दैट यस वी आर नो लेस देन एनीबडी एल्स. एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज वी नीड टू ओवरकम टू बी सक्सेसफुल. सेकेंड is time management. Whatever role you're playing, whether you are a founder, you are a leader, you know, women cannot have it all. So we have to plan things so that we are the best at everything we have to do. You know, at different stages of life, being a mother, being a daughter, we have our own societal challenges, and they can be managed only by managing time, and that is very critical for us. So these two challenges are something I think which every woman faces every day, and being a startup founder, it's no different. So you have to overcome these.
1: That's amazing. हम लोग अपनी स्टार्टअप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद. सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वील कम बैक आफ्टर द ब्रेक.

0: वी वेलकम यू ऑल बैक टू आवर शो. जैसा कि हम स्टार्टअप चर्चा पे चर्चा कर रहे थे विद डॉक्टर दिव्या राजपूत एंड सुरभि मैम. मैम, दिव्या मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज आप काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंक्यूबेट करते हैं रेगुलरली, तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है इंक्यूबेटर्स को ऑफर करने चाहिए जिससे कि स्टार्टअप्स को जो है यू नो दे आर नर्चर्ड इफेक्टिवली एंड यू नो स्टेप अप टू द ग्रोथ.
1: इंक्यूबेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है. हम इसको बोलते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रिपल हेलिक्स मॉडल. ट्रिपल हेलिक्स जहाँ पे की गवर्नमेंट है, जहाँ पे की कॉर्पोरेट है और जहाँ पे की एकेडेमिया है. सो इंक्यूबेशन अक्सर आपने स्पेशली इंडिया में जब हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं तो इंक्यूबेटर्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से शुरू हुए थे. हमारा स्टेप भी जो है या अभी शारदा लॉन्च पैड जो है ये हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हाउस्ड हैं, बिकॉज हमें ये पता है कि एकेडेमिया में टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं. हमें ये भी पता है कि एकेडेमिया में हमें अच्छे मेंटर्स मिल सकते हैं, एकेडमिक मेंटर्स. लेकिन जो हमारा पर्पस है इंक्यूबेशन करने का वो गवर्नमेंट के साथ सॉल्व होता है या फिर कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज इंडस्ट्रीज के साथ सॉल्व होता है. सो इसलिए इंक्यूबेशन इसके यू नो कोर जंक्शन में है जहां पे ये ट्रिपल हेलिक्स को कवर करता है. सो इंक्यूबेशन में हमारे पास अर्ली स्टेज के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम यू नो कुछ लोगों को सिर्फ आइडिएशन की अपॉर्चुनिटी दे सकें. तो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस कहते हैं. तो ये एक साल की हम फेलोशिप देते हैं जिसमें कि यू नो जो एंटरप्रेन्योर है वो देख सकते हैं कि भाई इज एंटरप्रेन्योरशिप फॉर देम और नॉट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो बने भी हैं कि नहीं. बिकॉज आप इतना ज्यादा रिसोर्स अरेंज कर लेंगे और बाय चांस आपको थोड़े टाइम बाद लगे नहीं ये तो हॉबी थी, मतलब यू नो हाँ दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, अब मुझे आई हैव ग्रोन ओवर इट. तो बेटर है कि आप यू नो यू फेल फॉरवर्ड, यू फेल अर्ली, यू नो. सो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप इन रेजिडेंस का प्रोग्राम है. फिर हमारे पास कुछ लेवल के प्रोग्राम्स है जिनको हम बोलते हैं I2P, मतलब आइडिया टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं. हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रयास प्रोग्राम है जिसमें हम उनको अप टू 10 लाख की ग्रांट फंडिंग देते हैं. इनोवेटर लेवल के हैं ये. इसके बाद जो P2M जिसको हम बोलते हैं, P2M सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू मार्केट. तो प्रोडक्ट टू मार्केट में हमारे पास इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है, हमारे पास हाइब्रिड इंक्यूबेशन है और हमारे पास फिजिकल इंक्यूबेशन है. लेकिन ये दोनों जो इंक्यूबेशन के प्रोग्राम्स हैं इसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. और उसके बाद जब आपने मान लीजिए मार्केट भी क्रैक कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया है और आपको लगता है कि हमने एक ज्योग्राफी बहुत अच्छी कर ली और अब हम दूसरी ज्योग्राफी में जाना चाहते हैं, या हमारे पास एक नंबर यू नो जितने एक लोकेशन से आ सकते थे उतने हमने कैप्चर कर लिए पूरी मार्केट, अब हम दूसरी जगह जाके उसको अपने मॉडल को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. तो हम एक्सेलरेशन के प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं और हम फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं. हम लोग सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को. सो सबसे जो जरूरी एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप पे ताकि वो स्केल अप कर पाए, एक तो है यू नो अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्टअप खुद बनाएंगे. दूसरा है मेंटर्स जो कि हम एज इंक्यूबेटर्स देते हैं, यू नो एक मेंटर प्लेटफॉर्म देते हैं. हमारे यहाँ पे तो इनफैक्ट एक मेंटर इन रेजिडेंस भी है जो हमेशा यू नो स्टार्टअप्स के लिए हाफ अ डे टाइप्स ही इज ऑलवेज अवेलेबल. सो समबडी हुज यू नो बीन एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, ही इज आर JSS एलुमनाई ओनली, हमारे स्टेप के एलुमनाई हैं एंड ही रन्स हिज मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी. सो ही इज द वन हुज ऑलवेज अवेलेबल टू स्टार्टअप्स. और यू नो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं हु ब्रिंग दैट डोमेन वैल्यू ऑल्सो, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है. So, you know, for any one person to keep pace with every development in technology is not possible. So, the expert, you know, experts that we have, domain experts, as well as एक मैंने बहुत अच्छा जो example देखा है हमारे JSS step में वो है जहाँ पे entrepreneurs ही entrepreneurs को support करते हैं. So, हमारा जो entrepreneur network है, इवन हमारा alumni network है, that is a very vibrant community. So, entrepreneurs की आपस में cross learning बहुत strong है. बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम यू नो डिफरेंट बैकग्राउंड, दे हैव सो मच एक्सपीरियंस. तो या सो वो क्रॉस लर्निंग के हम उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं. सो मुझे लगता है कि इंक्यूबेशन कैन बी वाइड, इट कैन बी यू नो ह्यूज. इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सकता है, इसके अलावा यू नो एग्जीबिशंस की अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं, हमारे साथ एग्जीबिशन लगाने का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं. सो मार्केट एक्सेस के लिए जो पॉसिबिलिटी हो वो देते हैं. लेकिन आई थिंक जो कोर पे जरूरी है वो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम. जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो अर्ली स्टेज के, मतलब एंटरप्रेन्योर मैं बन भी सकती हूँ कि नहीं, एक तो ये लेवल, दूसरा फिर I2P आइडिया टू अ प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट टू मार्केट और फिर एक्सेलरेशन. सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग रन करते हैं. एंड वी इवन हैव अ प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट इनोवेशन. अगर कॉर्पोरेट कभी सीखना चाहे कि ये इनोवेशन क्या चीज है, तो यू नो वी ऑल्सो हैव प्रोग्राम्स फॉर दैट.
0: दैट्स अमेजिंग. सुरभि मैम, आपका स्टार्टअप भी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, तो इनक्यूबेट होने से आपको क्या लगता है कि आपको क्या फायदा हुआ है? यू नो वॉट kind of gain you've gained out of the incubation center?
2: Yeah, so I'll be honest here. I discovered what is incubation bahut der se. Mera idea product tak pahunch gaya tha. By then I was doing a part time work because I needed money to fund my startup. And then when it was in the market, जब हमने लॉन्च कर दिया था bakerny.com platform, we had some 15-20 bakers who were baking on the for customer demands. That's when I wanted an office space. तो मैं ढूंढ रही थी, तब मैंने पढ़ा कि there is something called as incubators and government of India is supporting incubation for every level of startups, like Divya ma'am just explained. So that's when I came to know what is incubation. And luckily I was in Noida and I happened to be at JSS, and that's when I realized the value that a startup gets by being incubated. Of course, the main thing that I learned or that I gained from there was a network. Right? Like she said, there is a network of other startups also. And हर कोई आपका product नहीं बना रहा है. वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते हो करना. And it is so easy to learn from someone else who's sailing in the same boat. And even on the cost, it is effective because someone else has already gone through the journey of learning. तो अगर मुझे even if I have to hire a vendor for something, मैं किसी आसपास वाले startup से बात कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई vendor चाहिए, दे टेल मी कि अच्छा मैंने ये 3-4 से ट्राई किया, दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड दिस इज द बेस्ट इन क्वालिटी. सो आपकी वो लर्निंग इजी हो जाती है, आपकी वो जर्नी इजी हो जाती है, एंड आपका टाइम बहुत बचता है फ्रॉम दैट नेटवर्क. 1, 2 मेंटर्स हेल्प अ लॉट. हमें लगता है कि सी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट आई ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस कि मैं संभाल लूंगी, बट ओनली व्हेन यू जंप इनटू द पूल यू रियलाइज कि स्विमिंग कैन नॉट बी डन. यस, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि आपको कूदना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा. एंड देन यू नीड अ पंचिंग बैग. यू नो फाउंडर्स कई बार हम लोग अपने अपने में ही ट्राई करते रहते हैं कि यार ये कर देंगे बहुत अच्छा बन जाएगा, ये कर देंगे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आएगी, बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट बिकॉज हम अपने साइलों में काम कर रहे हैं. यू नीड टू गेट आउट एंड टॉक टू पीपल, गेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू मेंटर्स से बेटर नहीं बता सकता कोई और, क्योंकि दे हैव सीन सो मेनी अदर स्टार्टअप्स लाइक योर्स, अनलाइक योर्स, एंड दे हैव गेन्ड दैट एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी स्टार्टअप्स विद नो वन पर्सन कैन डू इन अ लाइफ टाइम. So it's always better to have a second point of view or a third point of view, because when you are in an incubator, आपको एक दो नहीं कई लोग मिल जाते हैं जिनसे आप brainstorming कर लेते हो, जिनसे आप नई चीजें सीखते हो कि अच्छा ये technology नहीं, there is a better technology that you can employ, I have read about it, or why don't you attend this session which is talking about this technology, and you gain so much out of it that you don't even realize that you have gained so much of skill. It's such a passive learning. But when it gets applied, you realize कि अच्छा ये तो मैंने यहीं से ही सीखा है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है जरूरी, बट जो इंक्यूबेटर से एक्सपीरियंस आता है देर इज नो मैच टू इट. एंड ऑफकोर्स वेन यू गो फॉर फंडिंग ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस हेल्प्स यू अलॉट.
0: मैम थोड़ा सा आप अपने स्टार्टअप के बारे में ब्रीफिंग दीजिए, ऑल्दो दैट शुड हैव बीन हैपन इन द beginning, you know, I should have asked you, but thoda sa ma'am, startup hamare listeners ke liye, so that sure. they'll know exactly what you're doing.
2: Sure. So bakehoney.com is an aggregator platform. Aggregator platform क्या करता है? अलग-अलग तरह के products को अलग-अलग तरह के product manufacturers को आपके सामने लाता है. How bakehoney is different is हम लोग खाली bakery को cater करते हैं and today there are so many women home bakers
0: exactly.
2: and they are working professionally. हम एक तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं और कैसे सपोर्ट करते हैं कि देर आर कस्टमर्स ऑन वन साइड हु वांट हेल्दी होममेड प्रोडक्ट्स ऑन द अदर साइड देर आर पीपल हु आर मेकिंग दीज हेल्दी होममेड प्रोडक्ट्स बट दे डोंट बोथ ऑफ देम कैन नॉट टॉक टू ईच अदर क्योंकि वो होम बेकर शायद आप ही के एरिया में हो आपको पता ही नहीं
0: पता
2: है
0: ही नहीं।
2: क्योंकि वो होम बेकर की एक लिमिटेड बैंडविड्थ है वो केवल बेकिंग पे फोकस कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने पे फोकस कर रहे हैं लेकिन उसे मार्केट नहीं कर सकते हैं सो वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म ऑन वन साइड ऑन द अदर साइड कस्टमर्स हैव अमेजिंग रिक्वायरमेंट्स क्योंकि टुडे विद इंटरनेट विद द ग्लोबलाइजेशन हमें सब पता है कि यू नो किस तरह के डिजाइन्स ट्रेंडिंग है इन द वेस्ट बेकिंग हैज कम टू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट सो वी आर ऑल एक्सपोज टू द न्यू ट्रेंड्स इन बेकिंग बट वी डोंट नो हु कैन मेक दैट फॉर अस सो वी गिव दैट प्लेटफॉर्म टू द कस्टमर्स कि आप यहां पर नए लेटेस्ट डिजाइंस लेटेस्ट इंग्रेडिएंट्स लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो बीइंग डिजाइंड एंड बीइंग मेड बाय एक्सपर्ट होम बेकर्स एंड यू कैन गेट देम कस्टमाइज्ड टू योर रिक्वायरमेंट सो दैट्स द प्लेटफॉर्म bakehoney.com करेंटली वी आर ऑपरेशनल अक्रॉस एनसीआर इन ऑल द रीजन्स ऑफ एनसीआर एंड इन पार्ट्स ऑफ बैंगलोर
0: मैम ब्रेक में जाने से पहले दिव्या मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट फाउंडर इट इज अबाउट द टीम एज वेल पूरी टीम है बट एक विजन है वो फाउंडर का होता है तो ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एक फाउंडर को जिससे वो अपना विजन वो इनोवेशन की कल्चर जो है वो अपनी टीम में भी बिल्ड कर पाए टू हैव अ सक्सेसफुल स्टार्टअप
1: आई थिंक सबसे पहला जो स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मंडे मॉर्निंग मीटिंग
0: द कल्चर
1: यस सो यू नो See, I think startups are not just about profit. Startups are more mission-driven organizations. अब आपका founder का वो mission है, लेकिन वो founder का mission आपकी team में कैसे जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको regular brainstorming उनके साथ करनी होगी. आपको उनके साथ नए products को क्रिएट करने होंगे सो यू नो बिकॉज सिर्फ आपके कहने से प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते आपकी टीम अगर आपके साथ है जिनकी डिफरेंट डाइवर्स एक्सपर्टीज है तो जॉइंट प्रोडक्ट्स कुछ क्रिएट हो सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि रादर मैं कहूंगी कि कभी कभी ये थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है बहुत सारे स्टार्टअप्स को ऐसा लगता है कि हमारी टीम्स यू नो बिजनेस क्रैक नहीं कर पा रही हैं सेल्स क्रैक नहीं कर पा रही हैं तो उस केस में हमने ये भी देखा कि कभी कभी हो सकता है कि वो सही यू नो रिक्रूटमेंट ना हो जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है जैसे कहीं भी होता है एकेडमिक्स में होता है कैन बी यू नो मे बी पीपल नॉट फिट फॉर दैट रोल राइट तो एक तो सही हायरिंग में फिर बहुत जरूरी है कि यू नो इफ द स्टार्टअप्स कैन क्रिएट एन ईसॉप पूल मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ताकि एम्प्लॉयज को भी लगे कि अगर कल को कंपनी ये बड़ी हुई तो मेरा इसमें ओनरशिप है तो वो ओनरशिप दे पाना और अक्सर यू नो एंटरप्रेन्योर्स बिकम द बिगेस्ट बॉटलनेक आल्सो बिकॉज हम डेलीगेट नहीं कर पाते हमें हर चीज अपने तरह चाहिए बिकॉज हम परफेक्ट हैं हमें लगता है हमारा काम परफेक्ट है तो हम ही एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है सो यू नो फाउंडर्स टू लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन एंड नॉट बिकमिंग अ बॉटलनेक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा काम उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप कर लेते पर कुछ तो हो जाएगा आपके पास आके नहीं तो रुक जाएगा So, you know, the more people will start delegating power, delegating work, delegating responsibility, okay? And as well as giving ownership to their employees, at least core team. So, you know, every founder should create an inner circle for themselves. There has to be, you know, at least 5 people in your inner circle, including an advisor, maybe an incubator head, maybe somebody. Wo 5 log jin pe aap aankh band karke believe karte hain, right? Create your inner circle. That's one tip. Two, start delegating responsibility. आप खुद सब कुछ नहीं कर सकते. Third, जो आप products market में उतार रहे हैं उनको co-create कीजिए अपनी teams के साथ. ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, जाइए ना एक रिट्रीट करके आइए, ऋषिकेश चले जाइए, ठीक है, नैनीताल चले जाइए, एक रिट्रीट करके आइए, ठीक है. सो यू नो अपनी टीम को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने साथ ग्रो करने की, बिकॉज आपने सही कहा वानी कि स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट द फाउंडर, राइट, बिकॉज फिर तो हीरोज बनते हैं ना सिर्फ,
3: एग्जैक्टली
1: जहाँ एग्जैक्टली हाँ. सो यू नो स्टार्टअप तो वहां बनता है जहाँ टीम साथ में चलती है. सो माय सजेशन टू ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स इज क्रिएट योर इनर सर्कल. आपके वो 5-7 लोग जो यू नो आंख बंद करके हर समय आपके साथ खड़े हैं, और उनको फिर गिव देम अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, गिव देम ओनरशिप, मेक देम को फाउंडर्स. एंड बिकॉज हमने हमारे अभी यू नो दो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छी फंड रेज किया है. तो एक स्टार्टअप ने 30 करोड़ रेज किया सन फार्मा से, एक और स्टार्टअप ने 40 करोड़ में वो कंपनी इनफैक्ट अक्वायर और हायर डील हुई है. तो सेम यू नो बैलेंस टीम, बहुत बैलेंस टीम है उनकी जो कोर टीम है, और यू नो प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है. सो एंड यू नो दे वर फुली इन्वेस्टेड इन टू वट दे वर डूइंग. सो वंस दैट हैपन्स आपकी टीम का भी आप पे कॉन्फिडेंस होगा. उनको पता है कि ऐसा नहीं कि यू नो आप खुद तो कहीं पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो और साथ में उनको काम पे लगाए हो और उनको कहा है कि स्टार्टअप है तो सैलरी कम मिलेगी. ऐसे नहीं होता, ठीक है, उनका एक फेथ होना चाहिए आप पे. तो वो फाउंडर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो परकुलेट दैट मिशन इन द टीम इटसेल्फ.
0: That's amazing. That's a great advice, ma'am. I think इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद.

0: तो हम मैं वापस आपका स्वागत करती हूँ सुनो शारदा के स्टार्टअप चर्चा शो में. और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे साथ है मैम दिव्या राजपूत एंड मैम सुरभि. सुरभि मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कैसे ये आइडिया आया स्टार्टअप का, यू नो, इन बेकरी एंड ऑल दैट? कैसे आपको ये स्टार्टअप का आइडिया आया, प्लस इनोवेशन क्या रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग द सोसाइटल चैलेंजेस?
1: सो आइडिया कैसे आया, इट्स लॉन्ग स्टोरी, आई जस्ट कट इट शॉर्ट. सो इट वॉज माई सन्स बर्थडे, ओके, एंड वी हैड जस्ट शिफ्टेड, हम लोग दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुए थे, एंड विद इन अ मंथ बर्थडे पड़ा, एंड हमने सोचा एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं. सो वी हैड प्लान्ड एवरीथिंग वेरी वेल, ओके, इट वॉज अ न्यू हाउस, सब गेस्ट्स भी आए थे, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस वार्मिंग एंड हिज बर्थडे, सो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. अब बच्चों का जैसे होता है, ही वाज 4 इयर्स एट दैट टाइम, सो ही हैड अ थीम इन माइंड कि मुझे टाइगर चाहिए केक में, एंड एट दैट टाइम हम ढूंढते रहे, वी डिडंट नो अ गुड बेकर अराउंड, एंड वी वांटेड अ गुड थीम, सब कुछ परफेक्ट था एक्सेप्ट फॉर द केक, एंड दैट्स व्हेन वी फेल्ट यार, आई मीन आई नो देर आर पीपल हु कैन मेक सो गुड केक्स, बट आई डोंट नो हाउ टू रीच देम. And that's when we started working in the hindsight on this idea. But gradually, tab I was also in my job. मतलब वो आई चीज और चली गई. Then gradually we realized it once again. We felt ki yaar, I want a sugar-free bread for my mom. Sugar-free cake for my mother. She's a diabetic, and so on. So there were so many incidents which made me feel ki iski requirement jab mujhe pad rahi hai, I'm sure there are many others who need this.
2: Exactly.
1: And then I came to know about home bakers and people who are actually making this. So main wahan tak kaise pahunchu? That's when I felt ki we need to build this as a platform. हमने पहले शुरू में खाली content शुरू किया कि क्या सही है क्या गलत है, and as a mother I felt ki ingredients are important for my children. So we started writing about all of that. We were a small team of 3-4 people. हम लोग बस लिखते थे, and फिर हमें bakers ने खुद approach किया. We did a small event, bakers आए, and we realized ki there are so many of them. ओनली नोएडा की जो लोग इस तरह की बेकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, हु आर कॉन्शियस ऑफ इंग्रीडियंट्स, हु आर कॉन्शियस ऑफ डिजाइन, एंड हु फील फॉर योर प्रोडक्ट्स, एंड नॉट जस्ट केक्स, आप जो डेली बिस्किट्स खा रहे हैं, वी डोंट रियलाइज उसमें कितने केमिकल्स जा रहे हैं, हाउ अनहेल्दी इट इज, इवन इफ इट इज सेट टू बी यू नो हाई फाइबर और लो शुगर, इट इज स्टिल हैविंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स. सो देर इज अ लॉट वी कैन डू अबाउट चेंजिंग आर ईटिंग हैबिट, इम्प्रूविंग दैम विद ओनली सोर्सिंग इट फ्रॉम द राइट प्लेस. सो दैट्स वेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग टूगेदर दीज बेकर्स एंड मेकिंग इट इन टू अ प्लेटफॉर्म विच इज बेनिफिशियल ऑन बोथ द साइड. दीज बेकर्स गेट देयर बिजनेस, दे आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंड एज अ कस्टमर आई नीड देम, एंड दैट्स वेन वी मेड दिस प्लेटफॉर्म. नाउ अबाउट इनोवेशन, ऑफ कोर्स इनोवेशन इज नीडेड एट एवरी स्टेप. अगर आप वो कर रहे हो जो कोई और कर रहा है, तो आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम को ज्यादा एक पॉइंट के बियॉन्ड सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो एक सेम ही तरीके से आप अटैक कर रहे हो ना उसको. सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन द सोसाइटी, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो प्रॉब्लम पूरी तरह से आप टैकल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है. सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू वाटर, वेदर इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर पिक्चर, वेदर इट इज रिलेटेड टू यू नो एनवायरमेंट, इनोवेशन इज नीडेड, एंड इनोवेशन डजंट नीड टू बी हाईटेक. यू नो इनोवेशन कैन बी एज स्मॉल एज रिप्लेसिंग अ प्लास्टिक विद अ जूट बैग. You know, so it's a small innovation, but it is an innovation in itself because you're breaking the barrier.
0: I've read it somewhere that, you know, serious innovation is greater than invention.
1: Right. Maybe. You don't need invention.
0: We don't need invention. Divya ma'am, my last question is for you. आपके हिसाब से ma'am, जो भी women entrepreneur हैं, जो विमेन है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरफ से उनको क्या वो पीस ऑफ एडवाइस होगी जिससे वो जो सोसाइटल चैलेंजेस फील करते हैं, वो चैलेंजेस को वो कवर अप कर पाए और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाए?
3: मेरा सबसे जो आई थिंक शुरू का सजेशन होगा वो ये रहेगा कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए, ठीक है, फॉर विमेन. विमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक सुरभि सेड थोड़ी देर पहले कि यू नो वाई जस्ट एंटरप्रेन्योर्स हर वुमेन के लिए ये जरूरी है, पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए भी जरूरी है बिकॉज अब आप यू नो सिर्फ एक बिजनेस ओनर नहीं है, अब आप एक लीडर भी बनने जा रही हैं. सो जब आप लीडर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बट अदरवाइज आपका बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो एक आप अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए, जो मैंने बोला किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है, एक आपका इनर सर्कल, ठीक है, वो लोग जो आपके लिए अवेलेबल हैं. किसी तरह का यू नो आपको किसी मीटिंग में अचानक जाना पड़ेगा, ठीक है, और वाइल मे बी यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अचानक जाना पड़ेगा तो घर में कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. तो सबसे पहले आपके दिनचर्या को स्टडी कीजिए, देखिए आपको आपकी अगर आपके बिना वो चीज चले, चाहे फिर वो आपका घर हो चाहे आपका बिजनेस हो, आपके बिना अगर वो जगह चले तो उसके लिए कौन चाहिए? आपका रेप्लिका चाहिए या यू नो कोई लो स्किल्ड वर्कर भी चल जाएगा? तो सबसे पहले अपने रिसोर्स एलोकेशन करिए, फिर देखिए कि फंड्स कहाँ चाहिए. ठीक है, हम अक्सर अंडर फंडिंग की वजह से हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे तुम तो कितने टाइम से स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हो. सो वो शायद यू नो बहुत जरूरी नहीं है करना, बट मैं ये कहूंगी कि अगर आपने प्री प्लान कर लिया तो पहले अगर हो सके तो एंटरप्रेन्योर जैसे ही आप बनने की सोचें तो 6 महीने प्लानिंग कीजिए, आपकी रिसोर्स प्लानिंग कीजिए, फंडिंग के रिलेटेड, मैन पावर के रिलेटेड. अगर आपको आपके माइनस वो जगह चल सकती है कि नहीं चल सकती है, ठीक है, वो सोचिए, एक्सपर्ट्स अरेंज कीजिए, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप कीजिए और एक आपका इनर सर्कल क्रिएट कीजिए. सो मेरा ये सजेशन रहेगा, 6 months ऑफ गुड प्लानिंग कैन एक्चुअली सेव ईयर्स फॉर यू. सो वो एक मेरा सजेशन रहेगा टू ऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. और फिर जब एक बार आपने रिसोर्सेस अरेंज कर लिए तो उसमें 100% कूद जाइए, आप उसको 2 से 3 साल देखे देखिए आपको मजा आ जाएगा. सो मेरा बस ये सजेशन रहेगा हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए.
0: सुरभि मैम, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एज अ स्टार्टअप फाउंडर, वुमेन स्टार्टअप फाउंडर, फॉर ऑल द वुमेन स्टार्टअप फाउंडर्स आउट देयर.
1: सी इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ टफ जर्नी, एंड जो चीज टफ नहीं है उसमें मजा क्या है. सो फेस इट, इफ यू हैव डिसाइडेड, इट इज अ रोलर कोस्टर राइड, बट मजा आएगा. एंड अल्टीमेटली वॉट यू वॉन्ट इज समथिंग दैट यू शुड बी क्लियर ऑन. आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए मेरा अल्टीमेट गेम क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे कितने टाइम में क्या अचीव करना है. सेट योर गोल राइट, एंड लाइक दिव्या मैम सेड, कीप योर सपोर्ट सिस्टम रेडी सो दैट यू कैन जगल बिटवीन सो मेनी थिंग्स, बिकॉज जगलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी अ फाउंडर. बी इट अ मैन और अ वुमन, यू हैव टू जगल विथ सो मेनी थिंग्स, एंड वुमेन हैव टू डू इट मोर. So be ready for that juggle, be ready for the roller coaster ride. It is rewarding at the end, but you have to be patient and you have to be having your perseverance on. So wo aap jab tak patiently dheere dheere aage badhte jayenge and apna goal sahi rakhein, goal set rakhein, so there is no looking back.
2: We say that dreams which are not, you know, which don't scare you aren't big enough.
1: Right.
2: Absolutely. So true. You need to get a little bit scared and then डर के आगे जीते, लाइक वी ऑल से. सो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस स्टार्टअप चर्चा. आई विश टू थैंक दिव्या मैम एंड सुरभि मैम फॉर कमिंग हेयर एंड यू नो शेयरिंग देयर इनसाइट्स एंड थॉट्स एंड देयर जर्नी विद अस. और आई एम श्योर हमारे जो श्रोता हैं और जो भी हमारा शो देखेंगे उन्हें एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, स्पेशली टू द वुमेन जो कि एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं. उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी, word of thoughts honge and they can move ahead successfully. Thank you so much.
4: अभी आप सुन रहे थे विमेंस एंटरप्रेन्योर्स थीम पर आधारित ये स्टार्टअप चर्चा. इस चर्चा में शामिल थी डॉक्टर दिव्या राजपूत, द स्टार्टअप पॉलिसी एक्सपर्ट एंड इनक्यूबेशन हेड एट JSS. दूसरी हमारी गेस्ट थी डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, अ लीडरशिप एंड स्किल कोच. और तीसरी मेहमान रही मिस सुरभि गुलाटी गुप्ता, द इंस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर ऑफ अ विमेंस बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. और इस प्रोग्राम को संचालित कर रही थी, या यूं कहें कि मॉडरेटर थी, मिस वाणी कपूर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन से. आशा करता हूं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा. निश्चित तौर पर खासकर उन महिलाओं को जो इस क्षेत्र में आकर बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती हैं, और फिर कहते हैं ना कि एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो ये परिचर्चा आपको कैसी लगी? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के

भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
2: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
1: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
2: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
1: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
2: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
1: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.
6: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावत की।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, I'm Arun Vijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
5: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
4: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

जाने हैं कहां, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली, कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी, लिरिसिस्ट कौसर मुनीर। तू जाने है कहां, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
1: नमस्ते दीदी।
0: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है। तो बोले कि लेके चलोगी सरकारी हॉस्पिटल पे? तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ। तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
2: इस दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में। उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं तो उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और विभाग है, जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतर विभागीय जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग न पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।

ये चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है. सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो. पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया. इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा. बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको. इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज. और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री. मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए. इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पाँच साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
2: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
1: तो नहीं है आपके आहार में दम,
2: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
0: Film making a creative field. और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है।
6: तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.